ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उसे धरा रे जिसकी रखवाली आ रे करता साया तेरा हे

0: जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करे, परंतु मारीच और सुबाहु राक्षस से बहुत डरे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौरे परे और अनेक उपद्रव करे, जिसमें मुनि दुख पावे।
1: As I see Ram Daddy Sita Lakinda once again, or the in Montrose Shigwana's Guitars Day in Edmonton, Alberta. We've got Nadi Samday in our company, just totally enjoying the music.

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: सीताराम, माय नेम इज संजय सिंह प्रसाद एंड यू आर लिसनिंग टू सुंदर सपना विद रिकी रामलगन ऑन रेडियो जागृति 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे मां सरस्वती, अपनी कृपा का हमें वरदान दो। हे जननी, हम बच्चे हैं, शिशु हैं, अज्ञानी हैं। मां, तुम्हारी स्नेहमयी स्निग्ध दृष्टि से हमारी बुद्धि जागृत करो, जिससे हमारी मेधा प्रतिभा स्मृति तुम्हारे अलौकिक तेज से चमकने लगे। 64 कलाओं की अधिष्ठात्री विद्यादात्री तुम अत्यंत दयालु हो। हे मां शारदे, तुम्हें हर विद्या अभिलाषी का शतशः प्रणाम। मां सरस्वती, तुम हर विद्यार्थी को कदम कदम पर सिद्धि का वरदान देती हो। अत्यंत शांत भाव से अपने उपासकों द्वारा अनेक तत्व और व्याख्याओं की चर्चा कर नए सिद्धांत विश्व में प्रस्थापित करती हो। तुम ज्ञान को बढ़ाती हो, दुनिया की विचारधारा को प्रगति के पथ पर ले जाती हो। हाथ में वीणा और ग्रंथ धारण करने वाली शुभ्र कमल पर आसीन मां सरस्वती, तुम कला और विज्ञान का पवित्र मेल हो। दूध और पानी को अलग करने का सामर्थ्य रखने वाला महान विवेचक श्वेत हंस तुम्हारा वाहन है। तुम्हारा वर्ण कुंदा के फूलों जैसा उज्जवल है और चेहरे पर मृदुस्मित हास्य शोभायमान है। कोटि सूर्यों के विद्या तेज से प्रकाशमान है। ऐसी मां शारदा देवी का कृपा पात्र होने की अभिलाषा से हर साधक प्रतिदिन प्रातःकाल विद्यारंभ से पूर्व प्रार्थना करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ये सरस्वती मंत्र पारायण करने से वो कल्प वृक्ष जैसा सिद्ध हो जाता है, ऐसा उल्लेख देवी भागवत में है। परम दयालु नारायण जब वाल्मीकि के राम राम के जाप से प्रसन्न हुए, तब नारायण ने गंगा जी के किनारे वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी। उनके उपदेशानुसार वाल्मीकि ने सरस्वती मंत्र को सिद्ध किया और वे वाल्या से वाल्मीकि और वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि हुए। मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि आज हजारों वर्षों बाद भी रामायण की कथा सबसे अधिक सुनी और पढ़ी जाती है। ना मालूम ऐसे कितने विद्या रत्नों से जड़े हुए आभूषणों से मां विभूषित है। कितने सरस्वती उपासक उनकी कृपा से अमरत्व पाए हैं। प्रज्ञावर्धन स्तोत्र में शिवपुत्र कार्तिक स्वामी की स्तुति है, जो स्कंद पुराण से है। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 11 बार करने से विद्यार्थी की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है और वो मां शारदा का कृपा पात्र हो जाता है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य विरचित शारदा भुजंगाष्टकम के नित्य श्रवण और पठन से हर विद्या अभिलाषी शिशु बालक तरुण और प्रौढ़ को उससे लाभ होगा। उसकी ग्रहण शक्ति स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी।

ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती, तेरे भक्त जनों पी माता वीर परी है भारी, वीर परी है भारी, तलवा धल पर टूट परी माँ करके सिंधु सवारी, सिंहासन सवारी, सौ सौ सिंहों से